0: 92.7 Thunder FM का गया दौर से 93.7 Thunder FM की नॉन टाइम रेड नाउ ही वी गेट 46 मिनट्स आफ्टर 6 o'clock
1: Heart FM
0: वी गेट कैप ऑफ जो कमिंग थ्रू दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज ब्रॉट टू यू बाय वर्जीनिया हॉट डॉग बस्टर हॉट डॉग वर्जीनिया